भूल सकूं ता उम्र न तुझको चाहूं भुलाना खुद भी अगर मैं भूल सकूं ता उम्र न तुझको चाहूं भुलाना खुद भी अगर मैं।

तेरी बरकत से आए सैयदुल मुरसलीन, तेरी बरकत से आए सैयदुल मुरसलीन, सुबह रोशन हुई कैफ शाम आ गया। जब जुबां पर

जिसने चके हैं दोस्तों, फानी बूतों के नम कियात। ऐ मेरे खालिक़े हयात, तेरी खुशी है सद हयात।

निकम्म बस अब मुझे काम का बना दे। बहुत दिनों रह चुका निकम्मा बस अब मुझे काम का बना दे। मैं कब से हूँ महवे ख्वाब गफलत बस अब जगा दे, बस अब जगा दे।